नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बेवफा होती है।
1: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
0: हाँ है, तो मेरे गांव के।

0: है या ऐसी जगहों से आता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुँचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है,
1: जी
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक